0: उसको
1: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली मतवारी
2: खेतों खेतों डगमग डोले हरियाली मतवारी हो हरियाली